भिख खाही माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। गुर रामदास राखो सरनाई। दंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सत्कारयोग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणां च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दा पावन शब्द भाई साहब जी पासों सरवण किया। पवित्र बाणी पावन शब्द दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकाग्र करदे हुए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणां विच जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु जी अज दे शब्द दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नू जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण

दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। ता गुरु अमरदास महाराज जी कहिंदे ने खोटे दरगै सुटियन उबह करन पुकारा राम उबह करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया। हुणे जन्म गवा बैठे ने हुण हथ पल्ले कुछ नहीं है इसलिए पछताउंदे आ ते पछता के पुकार करदे आ कि सानू किते एक मौका होर दिता जावे। ये मनमुखां दी हालत खोटियां दी हालत गुरु महाराज जी दा

जीवन दाता है। इथे परमेश्वर की गल चल रही है, आप करे किस आखी है, जा जित पावे तित लाए सी, उदी वड़े दी वड़ियाई है। जग जीवन दाता वो सारे जगत दे जीआं नू जीवन देण वाला है, वो दाता है। कर्म भी दाता है, कर्मां दा फल देण वाला। ये नहीं कि कर्म जिहड़ा मैं कीता है वह फल मैनू कोई होर दे देगा, वह नहीं कोई होर दे देगा। इक्को ही है कर्म विधाता जिन्हें सारियां दे कर्मां दा फल उनू देना है। इक्को ही है सारियां दे कर्मां दा फल देण वाला और सबना दे उत्ते अपनी बख्शिश करन वाला, वह इक्को ही विधाता है। जग जीवन दाता आपे बख्श है सोई, वह आप ही सारियां दे उत्ते बख्शिश करन वाला और बख्श देन वाला भी वो आप पर

इस वास्ते जो ओ परमेश्वर ने आखना जो ने करना उदे अगे किसे दा जोर नहीं चल सकदा। उदा हुकम पूरी दुनिया ते है पर पूरी दुनिया दा हुकम उदे ते नहीं चल सकदा। हुकम अंदर सब को बाहर हुकम ना कोई। इसलिए असी उस मालिक दे चरणां दे विच खरे हो सकीए परवान हो सकीए उदे लई पहला गुरु की कृपा दे पात्र बनीए गुरु वाले बनीए गुरु की मत लईए गुरु की सिख्यावां लैके खोटे तो खरे होण दा यतन आ रोज नितनेम करते हैं ना ये खोटे तो खरे होण वास्ते है। रोज पाठ करते हैं सतसंग है कीर्तन है कथा ये कादे वास्ते है ये खोटियों खरे होण वास्ते है। ते जिहड़ा जिहड़ा खरा हो जाएगा वह गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। अरदास करो आपो अपने अंदर झातियां मार के कि मैं खोटा हाँ कि खरा हाँ क्योंकि हजे दूजियां वल देख रहे हैं भी आ भी खोटा आ भी खोटा आ भी खोटा आ भी पर जिदन अपने अंदर झाती मारांगे पता लगेगा भी मेरे च किन्नी खोट है। फिर अरदास वाहिगुरु दे चरणा च होएगी कि महाराज सानू खोटियां नू खरे बनाउण लई अपने दर ते रख के नाम बाणी दे रंग विच रंग दिओ ताकि लोक सुखी है परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले जीवन बन सके। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे ए पावन बचन बचना दी विचार साडे तुहाडे सभना दे मना दे विच वस जाए आप भी जुड़ो होरां नू भी जोड़ो बाणी बाणी दे धारनी बनो। अज दी विचार करदे आं बेअंत गलतियां भुल्लां होईयां सतगुरु बख्श देण अगे तो समत सोझी देण चढ़दी कलां वाला जीवन बख्शन पाव सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह दे पावन बचन अपने हिरदे विच वस

जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दान सरदान नाम दान श्री अमृतसर जिया दे दर्शन इशनान

काल पुरख अपने पंथ दे सदा सहायता तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुतामा दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो हे निमाने आंदे मान निताने आंदे तान नेउटे आंदे

चलायो। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की जो प्रभु को।

0: सिमरन दुश्मन तर
1: प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे प्रभु कै सिमरन आंदन जागे
0: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
1: प्रभु कै सिमरन साध के

0: सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे।
1: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी।
0: प्रभु कै सिमरन ने चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन।
1: प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, प्रभु सिमरन कांत न पार।
0: सिमरन से जन जिन को प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया।
1: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए।
0: हर सिमरन बैसी जति दाते, हर सिमरन नीचउ कुंत जाते।
1: हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना।
0: हर सिमरन कियो सगले अकारा, हर सिमरन में आप निरंकार।
1: कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन।

0: ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते
1: हर हर जपे हर का भगत प्रगटनी छपाए
0: हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संग।

0: साधु के संशोधन पावे जी दंते सबको बरसावे
1: सात संग धर्म राय करे सेवा सात कृष्ण शोभा सुर देवा
0: साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत।

0: अष्टपदी
1: ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में है कमल अलेप
0: ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सुसर्व कोसो
1: ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
0: को खोदे को चंदन ले
1: ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाह नानक जो पावक

0: रहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। एक ऊपर जी जन की आशा तिसकी कटिए जम की
1: फासा।
0: हर ब्रह्मचित आवे सो

0: अच अष्टवरी
1: चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार
0: सत सत विकरहार नाम सत सत रमण
1: आप सत सत सब धारी आपे गुण आपे गुणकारी
0: सत सत भक्ता सरस सज संता
1: पूजन हार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए
0: सतगुरु दे जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान
1: जा कै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन
0: प्रगटाया
1: बस्त गडाई ताको भिन्ना कहना जाई।

मन जय सतगुर के पास की सेवक के कार्य सेवा करत हुए न कमी किसको होत प्राप्त हो अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गर्जन सतगुरु जिस दया

0: में बिकफैल
1: होए अचिंत बसै सुखनाल सास ग्रासर नाम समार
0: चौरथियान सगली मना सासन पाविष्ट तना
1: हर कुंजी संच करो व्यवहारी हा सुख दर गय जयकार
0: सर्व निरंतर एको दे को नान जाके मस्तक ले
1: एको

0: ती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी।
1: जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर
0: साधना की मंगो दूर पार मेर श्रद्धा
1: सदा सदा प्रभु के गुण गाओ साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यान
0: सो लगे।

से जन तृप्ता ने पूरन पुरक नहीं डोला परे शरण आन सब त्याग अंतर पर गाश अंदिन लिवला।

0: दुख भ्रम गया
1: श्रद्धा सब पूरी सत्संग जुरी
0: जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम
1: समाए
0: किया जन्ने सो क्यों बिस्तरा जिन सब किछ दिया।

0: भगवान
1: धरन माया काश पयाल सर्व लोक पूरन प्रीत
0: पार
1: पूर्ण पानी बैसन तरमाहे चार कुंट दे दिसे समाये।

हृदय भगवंत धन धन तन जन आया जिस पर सा सब जगत राया जनिया मन का ऐसो जन के संग चित आवे लाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार आप मुक्त मुक्त करे संसार।

चलायो सब सिखन को कमै गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभ को मिल वोच है खोज शब्द में

करते कह विचारो तित कर गावो सोहिला सिवरि हंसर जनारो तुम गावो बिर नृपा का सोहिला बार जित सोहिला सदा सुख होय रहाओ नितन जड़े समालियन देखे गा देवनहार तेरे दान की मनावै ते दाते कवन शुमार संबसा लिखिया मिल कर पावो तेल दे सजना सीसड़िया जी हो वै सह सुमेला

करे को बेस अनेक बाबा जे कर करते कीड़तो ए सो कर रख उड़ाई तो राव मेसवे चसिया कड़िया पैरा दत्ती बारी मां हुआ सूरज कुरत अनेक नानक करते के केते बेस राग तनासरी महला पहला नगन मैथाल रव चंदीप कवने तारिका मंडल जनक मोती धूम लाल पवन जबरो करे सगल बंदराय पुलंत ज्योति कैसी आ

वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये महले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुरमत मलनासी सतगुर चरण कवल रिद धारं गुर अर्जुन गुण सहज विचारं गुर रामदास घर कियो प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जनक उपायो शब्द गुरु पर कास्यो हर रसन बसायो।

0: में अवतार अजागन आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पदथ ते मत चूके रे मन, पेद बेन जान बियो। प्रत्यक्ष हृदय गुर अर्जन के, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो।
1: जबलोनी भाग लीला रुदे, तब लो भ्रमते फिरते बोतायो। कल कोर समुंदर में बुढ़त थे, कब हू मिट है नीरे पछतायो। तत विचार

काल समुंदर पे रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसे शांत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अव न कोई मन बच जिन जानियो भयो ते संसर सोई तरण गगन अखंड में

दीनदयाल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीयां दे